to join us so that we can talk more about that. Or कैसा जो experience हमने कल किया, I think it was wonderful, it was out of this world. और आज का संडे का हम शो की ओर देखते हैं, तो ज्यादा करके हम रामायण पे ही फोकस करते हैं. पर रामायण के साथ साथ अगर आपकी कोई गीत की फरमाइश है, those of you are listening to us with our frequency पे सुन रहे हैं 96.9 पर, या आप हमें direct Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, if there is any song आपको पसंद है, you want to listen to it, flick us a message on here and we'll make sure we play that. चलिए कुछ different ही आज बजाते हैं. Well, we are mixing up a song. तो ये song की फरमाइश हमारे पास I think एक दो हफ्ते पहले आई थी, and we keep skipping this क्योंकि program इतना fast चलता है. पर चलो आज हमारे पास time है, तो आपकी फरमाइश पे लीजिए, well, Ed Sheeran, Sapphire, but featuring our very own Arijit Singh. You're listening to Radio Kajal Local, only on Plains Media.

जी बिल्कुल, मैं आई। आजा, ये गीत आप सुन रहे थे और उधर हमारे साथ ओकलैंड से माय कजन हैज जस्ट जॉइंड अस अवी समी। हाउ इज ब्रो, हाउ इज गोइंग संडे, ही इज चिलिंग ओवर देयर। और इधर हम प्रोग्राम की ओर देखते हैं, तो याद रखिए अराउंड हाफ एन आवर हम आप लोगों के साथ रहेंगे और फिर यही वादे के साथ जाएंगे कि वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। वैसे हम भजन क्लबिंग के बारे में बात कर रहे थे कि कल रात को हमने ये एक्सपीरियंस किया, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज लाइक आई थिंक नथिंग लाइक दिस आई हैव एवर सीन। जितने लोग वहाँ पर थे आई एम प्रीटी श्योर आपने भी बहुत इसे इंजॉय किया है। और आरजेजीबी को हम ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहेंगे राइट नाउ इन ओकलैंड, जहाँ पर लालेटन, यस मोहन लाल, इनका जो शो हो रहा है, शी इज पार्ट ऑफ दैट शो इज वन ऑफ द एमसीज, और आई एम प्रीटी श्योर एज यूजुअल शी विल बी रॉकिंग। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सम वीडियोज एंड फोटोज लेटर टुनाइट, क्योंकि द शो इज गोइंग ऑन राइट नाउ, आई थिंक इट गोज ऑल द वे टिल 9 PM tonight. और उनके साथ साथ we have got our few regulars जो हमारे साथ join in हो जाते हैं, दिलीश है, रिका है, डेलिना अम्मा है और शालीन है। ओ, शालीन is also performing. Sorry, शालीन, apologies. Good luck to you. You are also one of the performers over there. So I'm pretty sure you all will be rocking and you all will be amazing as always. तो yes, और show की ओर देखते हैं, तो जैसे हमने कहा है कि आज का हमारा जो दिन था

मोस्टली फोकस्ड ऑन रामायण. आज दिन में हमारा रामायण का प्रैक्टिस था. जितने लोग जो है रामायण टीम के साथ बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं, सो नाउ वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल, जब हम साथ में मिलकर रामायण A Tale of Two Kings इसका मजा उठाएंगे. मैंने ऐसे मजा उठाएंगे, वी गेट टू एक्सपीरियंस. वैसे तो हमने, हम सभी ने रामायण के बारे में सुना है, हमने काफ़ी बार रामायण देखा है, पर रामायण इन अ म्यूजिकल ड्रामा फॉर्म आई थिंक ये शायद आप पहली बार देखेंगे यहाँ क्राइस्टचर्च में. सो मेक श्योर यू कम इन नंबर्स. इन टिकट्स लेस देन 70 लेफ्ट. तो अगर आपने अभी भी अपना टिकट नहीं लिया है, गो आउट देयर एंड गेट योर टिकट. जितने लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पर जुड़े हैं FM 96.9 पर, कैसे हैं, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं. इसके साथ साथ जितने लोग किसी भी जरिए से अगर हमारे साथ कहीं पर भी जुड़े हैं, आप सभी को हम याद करना चाहेंगे. ओह लुक हुज हियर, हेलो ब्यूटीफुल स्मृता. यस, वैसे हमारे साथ जब हमने रेडियो शुरू किया था 10 साल पहले, तो शी इज़ द वन हु टॉट मी अ लॉट, हाउ टू टॉक ऑन रेडियो, क्या टोन रखना है, और यू नो हाउ टू गो अबाउट विद द फ्लो. एंड देन आपको पता है रेडियो में आने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप से आपको बात करना पड़ता है. आई डोंट टॉक लाइक दिस ऑफ एयर. ऑफ एयर हम यू नो अगर हम आपसे बात करेंगे कैसे है राइट, बट जब आप रेडियो पर रहते हैं तो थोड़ा वॉइस को डीप करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज इट साउंड्स प्लेजेंट, यू नो जैसे अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं. शी टॉट मी अ लॉट, शी वॉज सपोज टू बी विथ मी ऑन एयर टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैड अ फ्यू फैमिली and a very busy weekend, but I'm pretty sure one of these days she will be joining me in the studio and we can relive the moments from 10 years ago. Chale, is geet mein hum aap sabhi ko yaad kar lete hain, khas taur par se jitne log hamare saath udhar Facebook live se bhi jud gaye hain. Kuch log hame dikh rahe hain, kuch log hame nahi dikh rahe hain. So if you are there, just say hello so that I can acknowledge you too, kyunki aap apna kimti samay nikal kar hamare saath shamil ho jate hain. So why not? Why should not we say hello to you? Ye geet, jaise humne kaha, Sunday ko hum aise जो सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं जो आपको थोड़ा सा माइंड आपका रिलैक्स कर दे, आपको भी चिल कर दे. अगर आपको इस गीतों का मज़ा और भी उठाना है तो बाद में आप इसे फ्रीक्वेंसी पे जाकर या हमारे पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं. रेडियो खेजे लोकल लीजिए इस गीत में, हम आप सभी को याद कर लेते हैं. यू लिस्टिंग टू रेडियो खेजे लोकल ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया.

जी हाँ, दिल तो है, दिल दिल का एतबार है क्या करें। मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्मी पर्दे पर राखी जी के लिए। जी हाँ, जितने लोग हमारे साथ उधर, कुछ लोग हमारे साथ राइट नाउ दे आर जॉइनिंग अस ऑन फेसबुक लाइव। सरस जी बोल रहे हैं बॉइल्ड कसावा एंड मिंट टोमेटो चटनी, वाओ नाइस, यमी, मुँह में पानी आ गया। तो हाँ, हम रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे अभी ऑफ एयर, और जितने लोग हैं हमारे साथ 96.9 पे सुन रहे हैं, आपको भी बता दें कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समबडी टू लुक आफ्टर योर प्रॉपर्टी एंड जस्ट नॉट दैट, अगर शायद किसी कारण अगर आपके घर पे कुछ डैमेज हो गया है इन द वीकेंड एंड यू डोंट नो होम टू कॉन्टेक्ट, व्हेन आई से डैमेज, विंडो ब्रेक हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, एनी घर का एनी डैमेज, सो शी इज द वन, रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। हर प्रीत कौर जी यहाँ पर हमारे साथ है, यू कैन कॉन्टेक्ट हर एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल गाइड यू और शी विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। शिवेश ब्रो, व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? रोनाल्डो, पेनाल्डो, हाउज यू पेनाल्डो, हाउज यू डूइंग दिस डेज? I'm sorry, bro. So, Shivi, how's Combine X? How was the game today? And Sanjita Kumar ji, abhi hamare saath hai. Sanjita ji, aap sabhi ka hum bahut bahut swagat karna chahte hain. Ji, to hum kya baat kar rahe hain ki languages ke bare mein hum baat kar rahe the. How different it is na? Aawaaz, jitne log hamare saath yahan par se Fiji se hai. और अर्पण जी, अगर हमें पंजाबी में किसी से पूछना है, यू आर वेरी गुड, अगर हमें पंजाबी में किसी से पूछना है कि हाउ यू नो क्या बनाया है, व्हाट हैव यू कुक्ड, तो कैसे पूछ सकते हैं? इफ इफ यू वांट टू टेल अस, आई'd लव टू नो। जैसे हमने कहा कि हमारे फिजी में अगर हम किसी से हमें पूछना है कि क्या क्या बनाया है या क्या खाया है, तो वी से टू वर्ड्स, कौन सी बनाया, एंड दे गेट इट। मेरे जो इंडिया से दोस्त है जो यू नो, उनसे अगर हमें पूछना है तो आज खाने में क्या है, यू नो, आज खाने में क्या बनाया है, या आज खाने में क्या है सोया, तो अगर आई थिंक क्या बनाया, ये भी हो सकता है। आई थिंक क्या और कौनसी इज़ वेरी सिमिलर वर्ड्स इफ़ यू सी इट, कौनसी बनाया या क्या बनाया है, पर या एंड देन आई थिंक हमारे केरला में माई वाइफ, इट्स समथिंग टू डू आई लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स द वर्ड इज़ वेरी सिमिलर, काइके काइके, दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स कॉल्ड, बट या आई लव टू नो की बनाया आज खाने लाए। अच्छा, वाह, yeah, that's good, that's good, yeah. और संजीता जी, आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्लीज़ डू लेट अस। तो या आई थिंक कि हमारे जो लैंग्वेजेस हैं ये सारे काफ़ी वास्ट है, एंड इफ़ यू सी आउटसेल्फ, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, गॉड्स गुड ग्रेस एंड जीबीस गुड ग्रेस दैट 2023 में आई गॉट टू गो टू इंडिया। सो आई स्टार्टेड माई टूर फ्रॉम, वी लैंडेड एट मुंबई, इज इट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ दैट एयरपोर्ट। सो वी लैंडेड देयर एंड देन जीबी वेंट टू गुजरात टू सी हर पेरेंट्स, बट फ्रॉम देयर आई टुक अनदर फ्लाइट टू डेज लेटर टू जयपुर। जब हम मुंबई में थे, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ, मुंबई इज नाउन फॉर इज वड़ा पाव, बट वन थिंग विच आई नेवर फॉरगेट, आई डोंट नो अगर आप में से जो इंडिया से सुन रहे हैं, जितने लोग आप में से कभी आपने ट्राई किया नहीं, या फिजी से भी, आई डोंट नो, आप में, आपको पता है सीताफल क्या है? आप में से कभी किसी ने सीताफल का आइसक्रीम ट्राई किया है? एंड आई एम टॉकिंग सीताफल, एक्चुअली दिस इज सीताफल, नॉट, इसमें कुछ मिलावट नहीं, आई डोंट नो हाउ दे मेड इट, इट फेल्ट लाइक इट जस्ट फ्रोजन सीताफल, मैन, बट आज तक हमने अपने लाइफ में आई हैव ट्राइड सो मेनी डिफरेंट आइसक्रीम, बट दैट वन टेस्ट आई विल नेवर फॉरगेट। ओ संजीता, यू आर फ्रॉम सवेनी राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, इफ यू आर द संजीता फ्रॉम सवेनी, हाय। एंड संजीता जी, आपने बहुत पहले हमें बोला था कि रामायण जब आए तो प्लीज़ आप, आपके हस्बैंड, आपके सन, प्लीज़ कम हमारे 560

Yeah, work through इनके through every 6 months हमारा health checkup हो जाता है, which I've got one coming up very soon. And इसमें पता चल जाता है कि cholesterol है कि नहीं, you know, touch wood, ऊपर वाले के दया से आज तक इतने सालों में कुछ ऐसा नहीं आया है, and has never been anything, and I hope to continue it like that. But while saying that, I don't actually, you know, unnecessarily खाना भी नहीं खाते. Come to Lucknow, थोड़े हाँ राहुल रिकमेंडेड यार, राहुल को तो यार ये बंदा बहुत लकी है भाई, इसको जो फूड ट्राई करने को मिलता है. एंड तो यस, बाय द वे, अगर इफ यू आर प्लानिंग आप कहीं पे जा रहे हैं, यस गाइस, हम भी रिसेंटली गए यहाँ पर से क्राइस्टचर्च में से, हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, स्पेशली इफ यू वांट टू गो. पर सिंगापुर एयरलाइंस, आई टेल यू समथिंग, आई हैव बीन रिसेंटली भी हम कहीं पर गए थे, आई थिंक टेल हिम टू मेक इट नाउ, अभी पूजा फिनिश हो गया ना, सिंगापुर एयरलाइंस रहा, यू नो. एंड आई थिंक इनका जो सर्विस होता है, स्पेशली द फूड एंड ऑल दैट. सो राहुल, इफ यू आर लिसनिंग, सिंगापुर एयरलाइंस के बट लाइक यू नो, क्योंकि यू नो हाउ दे कम टू यू एंड दे आस्क यू कि आज के मेन्यू में ये है. सो लेट्स से, बिकॉज यहाँ से इंडिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं मोस्टली, शायद अगर आप राहुल, अगर यू आर गोइंग ऑन अ नाइट फ्लाइट, व्हाट इज वन थिंग यू सजेस्ट, अगर ऑप्शन आ रहा है, व्हाट इज वन ऑप्शन विच इज रियली गुड एंड यू नो जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि प्रीटी श्योर जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आई डाउट इट कोई ऐसा होगा हु वेंट टू इंडिया एंड दैट साइट और सिंगापुर एयरलाइंस में आपने नहीं बैठा होगा. सो या Let's see. So yes, guys, ऐसे बात करते करते टाइम ही निकल गया. एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दे, रामायण 19 सितंबर को ये हो रहा है, आपको दिखा दे, QR कोड यहाँ पर है, अगर आप इसे किसी ने अभी भी टिकट नहीं लिया है, यू डोंट वांट टू मिस आउट. हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टिकट बाकी है, और इसके साथ साथ ये 12 सितंबर को यहाँ पर हिंदू विजडम वर्कशॉप, इट्स अ फ्री वर्कशॉप, विजन ऑफ सनातन धर्म, टाइमलेस विजडम ऑफ फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, इनके साथ साथ वर्कशॉप, दो वर्कशॉप है, भागवत गीता डिकोडेड, अप्लाइंग द विजडम इन डेली लाइफ. यस, सो यस डेफिनेटली आप ये दोनों यहाँ पर जा सकते हैं 12 सितंबर को, मल्टी कल्चरल रिक्रिएशनल कम्युनिटी सेंटर, इट्स अ फ्री इवेंट. अनिता देवी जी, अनिता जी कैसे हैं आप, हाउ आर यू, वेलकम टू अवर शो. सारे जो स्पॉन्सर्स हैं इनको एक बार फिर हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे, खासतौर पर से रामायण का जो शो है ये हम आप तक लेकर आ रहे हैं, एनजेड मोबाइल, मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंस. रोबिन जी आज इनका जो टीम है फिलहाल के लिए ओकलैंड में एक शो के लिए तैयार हो चुके हैं, और इनकी तैयारी में हम भी योगदान देना चाहते हैं. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर अनदर संडे. जितने लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पे थे, खास तौर पर से उधर क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन से, आप सभी दोस्तों को हम हाय हेलो कह लेते हैं. आरजे जीबी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो इन ओकलैंड टुनाइट. ए नीरज जी एंड आपके एंटायर फ्रेंड्स को, आपके सारे जितने लोग आपके साथ बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बाकी भी जितने लोग फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे हो, साथ में हमारे फेसबुक लाइव वालों के लिए आज शाम का आखिरी गीत ये है, आरजे क्रेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्लेन्स मीडिया स्टूडियोज in Madras Street.